0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर

0: साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषयों पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त

0: से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख

0: समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुनलें दिल्ली केंद्र थेके प्रचारित समाचार प्रभात। আকাশবাণী বিলোনিয়া শুরু হচ্ছে বাংলা ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান ছায়াগীতি। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রথম গানটি শুনুন অনুসন্ধান ছবি থেকে, শিল্পী লতা মঙ্গেশকর।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव प्रस्तुत करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की

0: 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे

0: इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ আকাশবাণী বিলোনিয়া, শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান দেশবন্দনা। অনুষ্ঠানে শুনবেন দেশাত্মবোধক গান।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय

की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दानी पन्दडा
1: अ बुझलिए
0: रसामनी पन्दडे न
1: सालब्रम त रसामनी पन्दा न ताखु बरन शहरै त
0: प्रन्दलपति
1: अच्छा अंके नंग तिनी जे क्वेशन सङलाय त मनी आबनो तै नंग साइदा मान खते खराका हम बैंक के पांडा लगे तंगली तो तम हिमालय जरा त्रिक त्रिक पाइलाई तंखा जो ते कबू शेप नाइ जो नाइने तो शेप बनो शेप या फर हेलो हेलो देखो कर चीनी अजय जदू कलेज चीनी मूंग चीनी तब सूजर अब बैके चल हुई तो आओ चीनी अजय तबुने सीमू ने मल फाइमाले बस बालक हायदीबाना नागर सब दो हेलो हेलो इंके आं तबुक नौनी कक्त बुखा को थांगलिया फैदी जरा तक तक थांगली तक सवान इंके चीनी सीमू ने मल तो फाइमा बस बालक हाबा चीनी पारा आम सैडको चीनी बड़क बसंतमा आम सैडको जे कहम कहम रंग नक सकई मारकले बस बालक हाबाना इंके आबन सै सिकां तो जो रुचा मूंग हूक खाई जालाय दूँ जो खेत पानथर पाखलैम चीनी बड़क बस जरा दुग्या को दुग्या को बोलते फिफ्टी इयर्स तक तो लाइखा काखा फिबा अब आस कुसुम कुसुम मल कलमान कौन सारा थका किसान लाइ इनके जो पानथर खेत बाखलैफानो चीनी जो जद कलिजान जो पगई माइया तम हिमाल अब चीन थो गजा चीनी खुगो एहू खरंग अब चीनी खुगो समने से गई दूँ तबुने जरा रोग जिसमें जादू कलेज एब सरिया हिंद फिर जोन खनाखले सैमन अब जादू कलेज हिने तम हमाले अब जे चीनी जे थो से गई फैमा अब खुब खुगो गरंग फैमान तबुक के अब बीजा बो सपुक जाखा ते कलेज रगोबा चीनी स्कूल रगोब बक्सा फोरंगो बा सबजेक्ट रख दंग ते जे म्यूजिकल कलेज रगोब रवींद्र संगीत नि जे कबनी बसने रिचा मनो रोजाब जामा हाइन फोक म्यूजिक कलेज रगो सबारी बागान कलेज दंग आरो रगोब तब जदन तई रगो रिचा मनक फुर इनके अब कैसे चीनी हुकुमु से अ जद कलेजा इनके चीनी हुकुमु रिक्सा से अब इनके आ हुकुमु रिक्सा बागें जो बनो खिवि माया एब बगै माया अब कुसुम कुसुम दाग फानो जो बैगरजा को जो सेना बुसर गरियार जो ते अब चीनी थानी कमाई थे कमर थे हाइन जहाँ कलेजान जो जिसमान तैया दंगली फेब जो अब भाई चाली माइ अब अब कमरि थांगा इनके फायदे अजर सब दंफी जो गरंगे नागेना टाकुक बहुत खाना तक शुक्र बैसेमान हेलो हेलो
2: हेलो
1: लामसगो
2: भाईके
1: आजाइनाते तबुक जरा भाईके गई अब नई नुक्र दाम सैमान अब बैसे कुइस नाक नई दंगा नी आंसर से नाइट
2: आज फायबाद
1: कक्रीदे पाना तो बोतंग लगी दंगली तो हम चीनी दाखो ब्रिजेस इनके जदू कलेजा इं अब हाइकन जो आंब आसले सियाद हाइन बगे दिन असंग मूलक तो भी फैकिया नरंगी थानी आं कहम के सौई मानो हेने इनके आं जे सैमान मानी जे जेरे तुब मानी अब तो सौन दंग सान तेकिसा फिब फायदे अजरा अब सब दंग गरंगने हेलो
3: हेलो मैडम
1: फोन कहम
3: राजू
1: नीन क्वेश्चन

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, खोज और बचाव अभियान भी चला रहे हैं और प्रभावित समुदायों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। इससे पहले कल भारत ने वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान तैनात किए थे, जिनमें 41 सदस्यीय बचाव दल, 1 भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल, 30 टन राहत सामग्री, 6 टन दवाएं और चिकित्सा उपकरण और 2 भीष्मक्यू पोर्टेबल अस्पताल थे। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बर्तनों से खेलते हैं।
3: हाँ।
2: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो पता चला खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
3: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिख कर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मोहरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना,
2: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते हैं,
3: माता पिता पानी पानी।

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ।
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है ये।

0: बताने वाली हैं अदिति गुप्ता, बाकी बहुत बड़ा काम है।
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना, और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं।
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है, और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजू जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी, और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी, और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
0: क्या होगी, बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला, और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बच्चों बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है,
1: विषम आ जाता है,
0: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी।
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे, तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में
1: जी राजू जी।

0: है कि इसके पीछे भी जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी, जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले, और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं, पर कितनी गलत बात है, उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए, और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
1: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गाँव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब हाँ कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल प्रूव करती है, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है। बहुत जगह ये भी होता है,
0: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
1: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
0: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं। जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता, तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं। देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम
1: जाया
0: है।
1: करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाए ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था, तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ।
0: बाप रे,
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: तो इनके
1: तो
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को बोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे
0: हाँ, और
1: चलाएंगे।
0: कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है, ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता है ना कि पापा के पास में बाइक है या कार
0: हाँ
1: है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी
0: हाँ
1: चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे
0: बिल्कुल।
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने ये काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो

0: खत्म होने का मतलब नाम नहीं लेती और लगता है कि चलते भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी, ओ मेरी।

0: सोना ली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी
0: सहेली।
1: और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया। ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारतें हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना
1: जी।
0: तो भाई ये कुछ
1: उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं,
1: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाया भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
1: बहुत होती
0: तो
1: है।
0: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है,
0: हाँ
1: खुद के बाल ही काट देते हैं,
0: हाँ
1: कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं
0: या
1: बच्चे।
0: छोटे भाई बहनों के काट देते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे,
0: हाँ
1: उन्हें कह रहे मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब
0: हाँ
1: उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली
0: चली
1: जाती,
0: जाती।
1: तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देखकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: ये गाने में है।
0: हाँ।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना, तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं। बिल्कुल, कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते कि उनके बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, कहा भी जाता है तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी अलग होने
0: हो
1: लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्ग के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहां था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही है कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। तो पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माय चाइल्डहुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है। और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता। बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए।
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, वैसे नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।

0: खोल दी,
1: सब पुल खोल दिया अंदर से। पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब ये समझा कि हम माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो अब टाइम हो रहा है, हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है। उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें, और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माँ कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं है, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मान लीजिए, एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाए हलवाई के यहाँ जाके खा ले, घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: पानी पानी हो गए।
1: वैसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे,
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया, जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एक जाने माने शायर, एक जाने माने गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान दे।

0: देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क
1: सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुनारा
0: और फिल्म जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
2: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
3: हाँ,
2: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
3: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
2: तो मुल्क के, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
3: मुल्क का गाना आप वो सुनाए पिया समाए
2: जी,
3: बहुत अच्छा गाना है,
2: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
3: हाँ,
2: कव्वाली
3: यस यस,
2: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
3: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
2: जी, बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
3: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
2: जी,
3: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी है जो याद की जाएंगी,
2: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
3: जिक्र किया जाए,
2: दर्ज होती है आज के समय।
3: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
2: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15 इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
3: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
2: जी
3: बिल्कुल।
2: तो
3: आर्टिकल 15 से,
2: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
3: उस गाने की कहानी ये है कि
2: कोई दिलचस्प बात हो।
3: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
2: पड़ा है इजाजत फिल्म
3: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
2: अरे क्या बात है। हाँ,
3: उल्टा मतलब कि
2: सामान देना है।
3: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
2: हाँ,
3: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
2: हाँ,
3: ठीक है,
2: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
3: हाँ, तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में

0: मतलब वो शेर अगर याद है।
1: हाँ, इसी इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
0: क्या बात है, वाह।
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर
1: है ना।
0: तो
1: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है, और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं। तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
0: जी,
1: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था, जो गुलजार साहब का था ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय है, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने के बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते हैं जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: ये भी गाना लिख दो
1: जल्दी। और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर।
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए, ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है, है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है,
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लगा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, दो अर्थी।
1: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई।
1: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वा वा।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
0: जी जी।
1: और तू भी लगा के देख कभी, तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना हाँ, भी संदेश हाँ, देता है, सब एकजुटता का संदेश है। और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपके फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा एमएम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है एमएम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी। सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था, वो ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी जी।
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
0: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
1: आई बेखबर
0: सुनते हैं। हाँ, ये गाना।

0: कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में?
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना, इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था, जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर है, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने वो गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा, चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात

0: है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने,
1: जी
0: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
1: जी।
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए, वो तेरा नाम था,
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ, हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी।
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओह क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
1: जी जी।
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी, तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ, कुकू जी के साथ फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था, वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था। पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया, ये नहीं कि गजल बाद में गाना बाद में बना, पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था, बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है, ये उस टाइम की कहानी थी। और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे, तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है, तो ये सिचुएशन थी
1: जी।
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है, तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया। हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: बहुत
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुन रहा है?
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाए। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे कहते जाते,
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
0: क्या बात
1: है। हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है। और किस तरह से मतलब हिंदू मैथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
0: क्या बात है।
1: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
0: क्या बात है,
1: तो हाँ बहुत शुक्रिया
0: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहाँ अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिन की बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके ही अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
1: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
0: कुछ शायर एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
1: जी,
0: कोई अशार।
1: मैं अभी इधर एक नई गजल कही।

0: मैंने उसके दो तीन शेर सुना देता हूँ और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो,
1: क्या बात है,
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ,
1: क्या बात है,
0: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़े, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर,
1: क्या बात है,
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर,
0: उनके हाल पर, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तखलीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है,
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, वाह,
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ,
1: क्या बात है, वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप भी बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों

0: थांनाय चिकनगुनिया बेरामनि भाइरासनो तुबुनाय थाम्फैबाय वारजाकमानि सालब्रै सालसिनिनि उल' अ बेमुगनि तमुंसि जागो अ बेराम मानजाखे आदमसा बेलाय लुमनाय ताय गोबो गोलैनाय बेलायखे बख्रक सानाय कंग्राय मानजाकनाय गोपायो गोपायो खायाखेबा गोपानाय जरा तायासको रुवायनाय सानाय कुलुम 160 डिग्रि कासानाय थै अंखरनाय मकलो इनफेक्सन खायाखेबा गाहामखे नुगिया ओंनाय जरा सामानि ताय रुवायमानि तालनै ताल थाम्फानो तङैमानो ताय बेलाय साखे थैयामो फानो गलाय तंनाय ओ बेराम मादे मानजाक सैमानना हानखे थैनि एन्टीजेन एबा एन्टीबडी आमजुगैमा नायनाय चिकनगुनिया बेराम मानजाकमा लगे लगेनो डाक्टारमा नायजाकनाय मानजाकमा लगे लगे नायजाक याखे तायबो किनमै सिनचा कतर ओङैमानो ओ बेरामनि बागै टीका ताबुकबो गोरिख बाहायखे चिकनगुनिया मानजाकयाय तंनाय चिकनगुनिया मानजाकयाय तंना हानखे थाम्फै वारजाकयाय तंनानिनो कायसा लामा आबुनि बागैनो सिनि नगानाय गिनिनि बलं रग हगुइ नगानाव दैगोसारियावै तना नांनाय ताय गुन्दा सोंगै थुना नांनाय वादिनि दै गोजावैदा तं आबरग बेबागनो मानायनाय सालो थुप्रुब गुन्दा सोंगै थखे तायबो गाहाम ओंनाय मर्टिन कयल ताय थाम्बुइ खारजाकनाय बिथिमा सारनाय नगनि तायलामो नेट रुदि थाम्बुइ कासुना बागै नगो चिकनगुनिया बेमुख मानजाकजाक तंखे बनगुन्दा बिसिंग तन्दि अमहायरग ख्लाय तंखे डेंगि मेलेरिया ताय चिकनगुनिया बेमुखनि याकनि काति मान्नाय
1: শুনলেন চিকনগুনিয়া প্রসঙ্গে। অনুষ্ঠানে এখন লোকগীতি শুনবেন শিল্পী মঙ্গলশ্রী ত্রিপুরা।

0: रन बनाने में, और जोसेफ ने खास तौर पर शुरुआत जिस तरह से की, उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे, कनेक्शन मिला नहीं, तो वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता लगातार दिखाई दे रहा है, और कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो विकेट पर टिक करके एक बड़ी पारी खेल सके।
1: एंड अनदर थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड, मे बी यू हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड, दैट द बाउंस इज अ बिट वेरिएबल एंड दैट्स बीन कीपिंग द बैटर्स कंप्लीटली यू नो ऑन अ टेंशन मोड. And once those first two wickets fell, the others looked like as if they were completely strokeless wonders.
0: जी बिल्कुल ठीक बात है प्रेम, और मुझे ये भी लगता है कि क्रिकेट का खेल हो या दुनिया में कोई भी खेल, मैदान पर तो खेला ही जाता है, दिमाग पर ज्यादा खेला जाता है. जब आपके दो विकेट गिर जाते हैं तो वही जो बाउंस था, जो अब वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वो पहले ठीक दिखाई दे रहा था. मैथ्यूज के स्ट्रोक बड़े शानदार थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रेशर ले लिया. अगर आप दब करके खेलेंगे, बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाएंगे या स्ट्रोक्स नहीं लगाएंगे, तो फील्डर्स को आप न्योता देंगे कि आप उन पर दबाव बनाएं.
1: बट लुक एट द अदर थिंग, लुक एट द बॉलर्स, दे ऑल्सो बोल्ड वेल. यू सॉ एशली गार्डनर कमिंग विद सम वेरी गुड बॉलिंग. ऑफ कोर्स गार्थ एंड हैमिल्टन स्टार्टेड ऑफ सीमर्स, बट द स्पिनर्स वर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे बॉलिंग स्टंप टू स्टंप, बॉलिंग द रॉन्ग वंस एंड लेटिंग द बॉल कम ऑन टू द स्टंप लाइन, एंड द बैटर्स दे मेक अ मिस्टेक, एंड मोर ऑफन द नॉट यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द विकेट्स फॉल व्हेन दे ट्राइंग टू प्ले द बॉल अक्रॉस द लाइन.
0: बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि क्रिकेट में, खासतौर पर शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेट में, अगर आप बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं तो आप बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जब स्टंप पर बॉल होती है, आप खींच करके फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते हैं और जरा सी गेंद को मिस करते हैं तो आपका विकेट चला जाता है. तो लगातार अगर आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे, विड्थ नहीं मिलेगी ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर वो स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस बैटर के अंदर नहीं आएगा, और वही कहानी हुई है वेस्ट इंडीज की. और वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि अगर उसका दिन हो तो वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा दे, और नहीं तो दुनिया की किसी भी हल्की से हल्की टीम से भी हार जाए. हमने देखा है दो मैचेस हारे हैं वो इस वर्ल्ड कप के बीच में, किस्मत अच्छी थी जो सेमीफाइनल में पहुंच गए.
1: Ashley Gardner really bowled well. Out of the three overs, she's got 12 dots in that, taken two wickets of six runs. She's the one who literally made that, you know, move to put them under trouble. Here's a first over after drinks, and this is up in the air, goes high in the air. The fielder comes under and grabs this one, and that's Annabel Sutherland. And another wicket falls, just the first delivery after the drinks break, and the fifth wicket goes.
0: Aasan mauka. गेंद के ठीक पीछे थी, स्ट्रेट खेला था, एकदम लॉन्ग

0: to some very good bowling. I don't think it was extraordinary, but they kept bowling on the stump line and the batters committing mistake. And now I can see the pressure causing them further agony. Why? Because they're stepping out to play and risking the wickets.
1: शुरुआत के लिहाज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बॉल रुक करके आ रही है, और इसलिए जब वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा रहे हैं तो एक तो उन्हें कनेक्शन मिल नहीं रहा है, टाइमिंग सही नहीं हो रही, और गेंद उछल करके इधर उधर जा रही है। ज्यादातर कैचेस हमने देखे पकड़े गए बहुत आसानी के साथ। तो अब करें तो करें क्या? अगर आप हल्के से प्लेस करके रन लेने की कोशिश करेंगे तो एक एक रन से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे तो कैच पकड़ने की उम्मीद है।
0: Being played by Campbell, because they run across for a single and plays it down on the inside, takes a single and takes the score up to 74. And West Indies now looks to be in real dire straits. Absolute 74 for 5 in the 15th over continuing, as here is Molina bowling a slower delivery and the batter has to literally smash this one, plays it down into the whitish mid-off region, crosses over and takes a single. And now boundaries have become a kind of a precious item. And I'm sure Shama will just now tell me as to how many deliveries since we haven't seen a boundary. That's a very interesting thing. Our scorer is going to work on that. Here's the next delivery, which is back of the length spot there. And the batter off the back foot just punches down to the whitish mid-off region, picks up a single, easy-looking single. And that takes the score snailing up to, at a snail's pace, or cantering up to 76 for the loss of 5 wickets. 15th over, just 2 deliveries more. As here's the next one, that slightly short, plays it across the line, a sweep shot. But there is a superb piece of fielding there at backward square on the inside. The batters have in the meantime crossed over for a couple of runs. And that brings the score to 78 for 5. Nothing exciting about it. I'm sure the coaches, all of them must be really worried as to what should be the score after 20 overs.
1: Kya pana bada mushkil. West Indies bhi shayad uska rumaan nahi laga pa rahe honge. Aur ye stroke khelna chahte the ekdam seedhe. Lekin gend palle se lagti hui thoda sa on site mein kahi. Deep mid wicket par gend field hui Sutherland ke haatho. Lekin run wahan par mil gaya.
0: All right. So, well, Sanjay, if you look at the last three or four overs, the batters are literally struggling to get even singles and twos. Wherever they're playing the ball, they get the ball fielded.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आहा,
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So we start a fresh over from Wareham, and that ball is in the air but safe of the fielders there. The ball will hit the fence for 4 runs at the whitish long off region.
5: ये लगा आभा का चौका।
0: So this boundary, Sanjay, coming after 2 overs.
1: T20 international semi-final मुकाबला, और 2 ओवर के बाद एक बाउंड्री वेस्ट इंडीज के बैटर से।
0: And that too not very convincing. That ball could have gone into the hands anyway. Wareham comes in over the wicket balls and in the slot played onto the whitish mid-off region, straight into the hands of the fielder all along the ground. Campbell, of course, playing on 22 of 24. But it now looks as if even Campbell is not really gelling with the kind of stroke she's known for. Here's the next one. She daringly steps up and oh, that ball. Is that a low catch? We'll have to wait and watch. And the ball has straight gone into the hands of the fielder there. Yes, that's another wicket there. And that ball went as a very low catch, trying to step out and play. Just couldn't get in the middle of the bat. Low toe end of the bat. And the catch coming into the whitish mid-off region.
1: एलिस पेरी ने बड़ा बढ़िया कैच पकड़ा नीचे झुकते हुए। तारीफ करनी होगी उनकी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने, और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भले ही कामयाब नहीं थी लेकिन कैच छोड़ा नहीं। छठा विकेट चला गया वेस्ट इंडीज का, और अब ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज 100 के आंकड़े के लिए स्ट्रगल करता दिखाई देगा। कैम्बल ठीक ठाक खेल रही थी, कुल मिलाकर 22 रन बनाए उन्होंने, शुरुआत अच्छी की लेकिन बाद के ओवर्स में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दिया। और अब डॉटेन आ रही हैं। डॉटेन आमतौर पर या तो मध्य क्रम में या पारी की शुरुआत करती है।

0: अच्छी बैटर हैं टीम की। डियांड्रा टॉटन कुल मिलाकर 153 मैचों में 3000 से ज्यादा रन हैं उनके, 14 अर्धशतक, 2 सेंचुरीज लगा चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में, तो ये बताता है डॉटन का कद क्या है। लेकिन आज मुकाबले से पहले थोड़ी सी चोटिल दिखाई दी, अब लगता है कि रिकवर करके वापस आई है।
1: संजय अब शायद कहना पड़ेगा कि आप पछताए कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
0: बिल्कुल, चिड़िया तो चुग गई है लेकिन यह अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है।
1: एब्सोल्युटली,
0: और आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते।
1: वेल, डॉट इन कम्स, ही इज इन अ बिट ऑफ अ बॉदर एज वैरम्स फर्स्ट डिलीवरी प्लेज ऑन द ऑफसाइड एंड नो रन्स टेकन। वी अर्लियर सॉ हाउ डॉट इन वाज कैरीड फ्रॉम द मिडल ऑफ द ग्राउंड वेयर शी वाज प्रैक्टिसिंग, दिस वाज नॉट इन द गेम। So here is the next delivery, which is outside the off stump, and once again just about on the fourth stump, which the batter wanted to convert into a stroke on the offside, moving away from the line of the ball, and no runs taken. We have 6 fielders on the offside, 3 on the on, 4 on the fence, 2 in the V, 1 on the mid-wicket region, 1 on the back of the square on the offside. Here's the next delivery, played on the offside, and that ball goes straight into the hands of Molyneux, and a very good chance of a run out goes out of hand for Australia, but I don't think they will mind ever. 16 overs gone, West Indies now 84 for 6.
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो डॉटन अब क्रीज पर आ चुकी हैं, लेकिन उनके आने से क्या वेस्टइंडीज की उम्मीदें वापस जोर मारेंगी, क्या वेस्टइंडीज इन आखिर के कुछ ओवर्स में, 4 ओवर्स यानी कि 24 गेंदें बाकी हैं, 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन्स बना पाएंगे, क्योंकि अब उनकी पास बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। ग्लासगो हैं, फ्लेचर, मुनीसर, तो जो नीचे के बल्लेबाज हैं वही अब इसके बाद दिखाई देंगे। गार्डनर कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने, आज ये 17वां ओवर डाल रही है डॉटिंग के लिए। डॉटिंग ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को ड्राइव किया एक लौते रन के लिए। गेंद बल्ले से लगी और डॉटिंग ने अपने सफर की शुरुआत की। बहुत ही सॉलिड बैटर और लंबे समय से खेल रही है वेस्ट इंडीज के लिए। 2016 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल के फाइनल में हराया था और उस टीम की 5 लड़कियां इस टीम में भी शामिल हैं। जो तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन उसका आज प्रतिफल दिखा नहीं। इस गेम को हल्के से केवल प्लेस किया, एक लौता रन दौड़ करके पूरा किया। तो गार्डनर की 2 गेंदों पर 2 रन, वेस्ट इंडीज 86/6, 5.27 का औसत, रनों का औसत 5.25 के आसपास पूरी तरह से अटका हुआ है, न बढ़ता है न घटता है। और इस बार फिर निकाला मिड विकेट की दिशा में 1 रन, ये दूसरे रन के लिए जा रही है। थोड़ा सा जोखिम हो सकता है लेकिन आपको बिन आखिर के ओवर्स में जोखिम लेना ही होगा। गार्डनर ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी आज की है, अच्छा प्रदर्शन गार्डनर का। अगर आप देखें कुल मिलाकर 4th ओवर उनका चल रहा है, उनकी इकोनॉमी है 2.86, T20 इंटरनेशनल में 2.86 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट लिए हैं गार्डनर ने। तुरुप का पत्ता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। और 17वां ओवर चलता हुआ ओवल में क्या वेस्ट इंडीज अपने बचाव के लिए आखिर के 3 ओवर्स में आतिशबाजी कर पाएगा, क्या डॉटन का बल्ला चलेगा। और इस बार गेंद पैड्स पर डालने की कोशिश की थी लेकिन अपने शरीर से दूर धकेला, एक लौता रन और। इस 1 रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर बढ़ता हुआ अब 90 रन 6 विकेट पर। डॉटन ने अब तक 5 रन बनाए 6 गेंदों से, ग्लासगो ने 4 रन बनाए हैं 4 गेंदों से। और गार्डनर के कोटे की आखिरी गेंद रक्षात्मक तरीके से रोका, 1 रन दौड़ करके पूरा किया, 17 के बाद 91/6।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: जानिए आभा के बारे में। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें।

0: मुश्किल नहीं होगा उनके लिए, बहुत इजी होगा। अगर मैं वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात करूं तो अगर देखिए तो सारे जो बैटर थे ना वो केवल क्रॉस बैट चला रहे थे, मतलब बॉल की लाइन में नहीं खेल रहे थे। अगर वो उस बॉल की लाइन में खेलते तो मुझे लगता बेटर स्कोर होता।
1: राइट, राकेश, आई विल कम टू यू। समवेयर डू यू फील दैट द वेस्ट इंडियन बैटिंग जस्ट कुडंट पिक अप देमसेल्व्स टुडे, दे वर एवरीवेयर व्हाइल पुटिंग ऑन अ स्कोर टुडे?
2: Yeah, you're right, because what I thought was that, you know, even after that 47-run start, somehow they couldn't get going. It was, you know, that they could never accelerate. They were just about, you know, that run rate of between 5 and 6. They stayed there and they ended up with just over 6 and over. And that is thanks to that 42-run stand for the, you know, that last wicket, which we saw, the 7th wicket. Otherwise, I think between that 47-run stand at the top and 42-run stand in the middle, in between they had very little to show, and thanks to that, you know, that late kind of a charge which we saw, desperate charge, and that too, and it came from the bat of that in which we all thought that she was not able, she, you know, like there was this thing whether she'll be able to come and bat or not. She gave that impetus. I don't think it's enough, but then women's cricket, as I said, 120 125, at the face of it, yes, Australia should just, for them it looks like just like a walk in a park, but let's see. I mean, because I'm also getting the impression that ball is probably stopping at times, but then, you know, when these guys, when Australian girls come and bat, their skill sets are very different than what we have seen from the West Indian batters. So the timing and all, we are likely to see a very different approach.
3: Right. लेकिन अगर हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर कप्तान सोफी मोलिनी ने 6 गेंदबाजों को लगाया। कप्तान ने खुद 2 विकेट लिए। एशले गार्डन की तारीफ करनी होगी रविंदर जी, 4 ओवर में मात्र 13 रन और 2 विकेट।
4: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग का प्रदर्शन किया सबने लोगों ने, और मुझे लगा है कि इतना एक्सपोजर शायद वेस्ट इंडीज में इतना लोकल वुमेन्स में शायद नहीं मिलता होगा, जितने मैचेस नहीं खेल पाते होंगे, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीमें खेल पाती हैं। ये इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा, सिर्फ मैथ्यूज ने शुरू में अच्छी बैटिंग करके दिखाया, बाद में डॉटिन ने थोड़े से अपने हाथ चलाए तो वो बड़े, और बाकी जो लग रहा था ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई फॉर्म में है, और पूरा टूर्नामेंट में जैसे पता चला 2 मैच हारने के बाद भी ये लोग पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है केक वॉक ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया।
3: लेकिन आशा जी, अगर हम गेंदबाजी में देखें, 6 एक्स्ट्रा थे, 2 लेग बाय, 4 वाइड, नो बॉल तो हुई नहीं, प्रोग्राम फ्री है, 20 है।
0: वो ऑस्ट्रेलिया ने मुझे लगता है सुन लिया, इसलिए उन्होंने कोई नो बॉल नहीं दी।
1: लेकिन अगर आज हम आशा यहाँ पर बात करें, जिस तरह की आज गेंदबाजी रही ऑस्ट्रेलियन टीम की, 47 में पहला विकेट गया, लेकिन असली कमर जो कहते हैं ना कहीं पर वेस्ट इंडीज की, तब टूटी जब अगली 4 गेंदों में उन्होंने 3 और विकेट्स अपने गवा दिए, एंड टू टॉप इट ऑल उसके साथ अगर देखें तो आज जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का हम राउंड अप देखते हैं उसमें कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने आज 54 डॉट बॉले डाली है। T20 के मुकाबले में जहां 120 गेंदें होती है उसमें 54 डॉट्स,
3: और राकेश कह रहे थे एक भी नहीं होनी
1: चाहिए, मतलब कमेंडेबल थिंग कर दिया आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने ओवरऑल अगर देखे आज तो।
0: हाँ, वही ना, पहले सबसे पहले आप T20, मैं वही बोल रही हूँ, सारे क्रॉस खेलने के लिए जा रहे थे, अगर वो बॉल की लाइन में आके खेलते तो जो रन 125 बने हैं मे बी वो 140-150 के करीब चले जाते, पर आपने स्टार्टिंग में जब हमारे ओपनर आए तो वो ओपनर भी जो थे क्रॉस, सब क्रॉस खेल रहे थे, किया जो सर्फ, ये सब इन्होंने क्रॉस खेला, जबकि मैथ्यू बहुत अच्छा खेल रही थी, बट वो उसने जो बॉल चूज करी वो बहुत ही गलत, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, सबने क्रॉस खेला, उसको स्ट्रेट खेलती तो मे बी वो बाउंड्री हो जाती।
3: राकेश, टू मेनी डॉट बॉल्स फॉर कम्फर्ट।
2: या बिकॉज यू नो इफ यू कांट प्ले स्पिन, you have lost 6 out of 7 wickets to spin, and overall when you look at it, you always struggle, you're not able to read the length, you're not able to gauge the turn, and it wasn't turning viciously, I mean it was just another typical England wicket where it doesn't spin so much, there is an extra bit of bounce I thought sometimes every time the ball hit the seam, and the batter struggled, any delivery which had a bit of bounce and that too just a bit short of the length, you know, back of the proper length, they struggled.
1: Right,
2: the timing wasn't right, and as Asha very rightly said, cross batted shots you see so many times, and you are not able to clear the infield 30-yard circle. You are not even getting a single there. So unless you pierce the field, go for the gaps, एंड द होल आइडिया वॉज टू हिट ओवर

0: top. Right. And they struggled.
1: I think some of the irony is that when we're talking of that the West Indies couldn't play spin very well, they are the team that actually also bowl spin very well. And Ravi, aapke paas aaunge is baat pe ki ab West Indies ko 125 run ka target defend bhi karna hai, to kya unke spinners is match mein kuch bhi kamal kar payenge aapko lagta hai ab?
2: देखिए मुश्किल है मैच इस समय क्योंकि रन उनके पास इतने हैं नहीं इससे उसमें, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही 6 ओवर के अंदर ही काफी 50-60 रन बना के मैच को एक वन साइड ले जाएगा, क्योंकि ये विकेट जो है इतना जिस हिसाब से बॉल किया है उस स्पिनर्स ने उससे बहुत ही स्लो बॉल किया है, और वेस्ट इंडीज को भी अब लेकिन बॉल तो स्पिन कर सकते हैं लेकिन उनके पास वो डिफेंड करने के लिए उतना रन नहीं है। 160-170 रन बनते तो फिर शायद थोड़ा चांस बन सकता था, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं है कि मैच
3: आशा डिएंड्रा डॉटिन जो है वो पहले लग रहा था थोड़ा इंजरी स्केयर हो गया मैच से पहले और वो खेलने भी बहुत नीचे आई, लेकिन फिर जब आपने उनको देखा खेलते हुए 26 रन नाबाद 16 गेंदों में 4 चौके, तो फिटी लगी या फिर कुछ अभी कैरी कर रही है इंजरी?
4: नहीं फिटी लग रहे थे जिस हिसाब से, बल्कि मुझे लगता है जो ओपनर ने नहीं करा सिंगल वो लास्ट के बैट्समैन सिंगल ले रहे थे, तो वैसा गेम अगर वो पहले खेलते अगर ओपनर तो मे बी स्कोर और अच्छा होता।
3: ऊपर खेलने क्यों नहीं आई राकेश?
0: टाइम चाहिए था उनको रिकवर होने के लिए, इसलिए बिल्कुल नीचे आए।
1: सो समवेयर डू थिंक इट प्लेड अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज बिकॉज डिएंड्रा डॉटन वाजंट अवेलेबल एंड कम टू थिंक ऑफ इट शी मेड 26 अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन।
0: यस आई मीन शी डिडंट हैव द टाइम आल्सो टू सेटल इन, शी जस्ट केम एंड जस्ट यूज्ड द लॉन्ग हैंडल एंड शी डिड इट वेरी इफेक्टिवली, सो यू हैव टू गिव इट टू हर ब्रेव एफर्ट, बट आई थिंक बिफोर हर हूसोएवर केम दे डिडंट डू इनफ बिकॉज यू डिडंट रोटेट द स्ट्राइक, दैट बीट्स मी कंप्लीटली।
3: लेकिन अगर हम अब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो जो विकेट कीपर है उनकी लेफ्ट हैंडेड बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल, कैसे देखते हैं आप सलामी जोड़ी को आशा?
4: जिस हिसाब से वो पहले भी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, 5 मैचों में अभी तो कोई उनकी मतलब हारे नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है पार्टनरशिप उनकी अच्छी, और उनमें सबसे पहली बात है कि कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई इतना रन नहीं है, 120 बॉलों में 126 रन बनाने हैं तो कोई टारगेट भी इतना नहीं है, तो उस हिसाब से, और बाकी उनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। तो
1: रवि आपके पास आऊंगी, 125 रन का मतलब स्कोर बना, 126 चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी अप टू द मार्क उतनी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बोलिंग उनके बोलर्स ने आज करी है वेस्ट इंडीज को 125 में उन्होंने कंटेन कर दिया। क्या यहां से कोई भी ऐसा पैतरा हो सकता है जो आपको लगता है वेस्ट इंडीज थोड़ा सा भी अपने इस गेम को अपने पक्ष में करने के लिए कर सकती है या अपना सकती है?
2: बिल्कुल, इसमें देखो वैसे तो क्रिकेट बने अनिश्चितताओं का खेल होता है, क्रिकेट में कभी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर यही है कि आप स्पिनर से शुरुआत की जाए दो रन से और उसमें अगर कुछ एक आध कोई गलती वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बैटर कुछ कर सके तो कर सके, क्योंकि इस विकेट पे जो मुझे कोई ज्यादा दम लग नहीं रहा कि बॉलर्स के लिए कोई ज्यादा दम है, अगर वो अगर ये चाहते तो थोड़े से मतलब सिंगल सिंगल निकाल के 160 तक पहुंचाते तो मैच में फाइट बनता, लेकिन अब तो मिराकल से हो सकता है अगर कोई 2-3 गलतियां करें और 2-3 विकेट निकाल जाए तो शायद प्रेशर बन जाए।
3: जी राकेश, ये जो गेंदबाजी है वेस्ट इंडीज के पास, अश्विनी मुनिसर, एफी फेचर, आलिया एलेन, जेनिलिया ग्लास्को, तो इनके पास भी है विविधता?
0: बहुत शार्प नहीं है, छोटी टीम्स के अगेंस्ट फिर भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं चलेगा ये, क्योंकि अगर वो इंडियन स्पिनर्स को देखने के बाद तब भी मैच निकाल सकते हैं, जितना भी इंडिया वाला मैच अगर आप याद करें तो उसमें स्पिनर्स ने जितना इफेक्टिव हो सकते थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि इंडिया के पास पेस अटैक उतना इफेक्टिव नहीं है, कहने को तो बॉलर्स हैं लेकिन वो जान नहीं है, तो यहाँ पे भी उनके पास वो वेराइटी क्लास नहीं है, स्पिनर हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो इफेक्टिव स्पिनर्स होंगे, वो क्लास है नहीं इनके पास।
1: राइट, एंड आई थिंक समवेयर टुडे इफ यू वर टू टॉक अबाउट दिस हाउ द गेम प्रोग्रेस्ड आल्सो, Australians were just way too good for the day for West Indies today, Rakesh. Matlab, they did not err much from their strategy apart from the fact that yes, in fieldings we could pick out nitpick that there were dropped catches, dropped missed opportunities, but still the fact that they were able to hold their nerves together under extreme pressure in a match like a semi-final, much appreciation and kudos and a round of laurels should go for Australia today, do you think? So
0: Sakshi, what happened was that, you know, barring that one dropped catch in the outfield, Australians held everything, you know. When the ball fell in no man's land, then it was beyond them. But overall, I would say that West Indies did nothing to put pressure on the Australians. That 47-run start was too sedate, you know. It should have been a little more, you know, in the face, which it wasn't.
3: Gee.
0: So when you are maintaining a run rate of around 6-7 initially...

0: not good enough. Because if you want to put pressure, you have to be off to a flyer. And that we didn't see.
1: Gee.
0: And that is where I hold Campbell responsible to a large extent. She stuck in there and she ended her innings. She played the longest. I mean, if you see the amount of time that she took, although she didn't get strike very regularly, but she couldn't even maintain a 100% strike rate.
1: Gee.
0: So that is disappointing.
1: Gee, Hayley Matthews, who is captain of West Indies, ki unhone sarvadhik 28 balls kheli, halanki unhone highest score bhi banaya 30, lekin jab wo jump gayi thi to bahut zaruri tha acha khelti. Lekin women cricket ko star ambassadors chahiye, star players. Aur agar aap Australia ke khiladi ki baat kare, Elise Perry, wo bahut hi akramak khelti hain. Kya special banata hai Perry ko?
2: पेरी को तो सबसे पहले वो जो ऑलराउंडर, उनकी बॉलिंग और बैटिंग जो दोनों है, और वो जो बैट करती है, ऑफ साइड भी इतना अच्छा खेलती है, पुल भी इतना अच्छा मारती है, तो वही उसको एक अलग बनाती है. जो फील्डिंग में जो वो सपोर्ट करती है, मतलब फील्डिंग में जो वो नो अपने बॉलर की जो बॉल में वो कैच पकड़ती है, स्टॉप करती है, तो वो एक उसको अलग बनाते हैं.
3: राइट रवि, आपके पास आऊंगी. कम टू थिंक ऑफ इट, टी20 के खेल में हम कहते हैं स्ट्राइक रेट कितना जरूरी है. आज एक डियांड्रा डॉटन जो काफी नीचे आई, 162.5 का स्ट्राइक रेट लेके चली, उसके बाद सिर्फ एक जेनियल्स ग्लासगो जिनका स्ट्राइक रेट रहा 115.38 का, एंड हेली मैथ्यूज 107.14. बाकी पूरी टीम का स्ट्राइक रेट तो छोड़िए रन्स तक नहीं थे. क्या ये इस समय प्रेजेंट स्टेट में, प्रेजेंट टाइम्स में वेस्ट इंडीज के क्रिकेट को दर्शाता है?
4: देखिए, शुरुआत उनकी टॉस हारने से ही हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो भी चेस करना चाहते थे, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करने पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट, मैंने पहले बोला था आपको कि एक बड़ा स्कोर चाहिए, उसी स्कोर के जो प्रेशर में वो लोग तेज मारने के चक्कर में आउट हुए. और शुरू में जो उनकी कप्तान थी वो अच्छा खेल रही थी, एक गलत शॉट बहुत महंगा पड़ गया, डॉटन की इंजर्ड हो गई बीच में. अगर ये डॉटन ऊपर खेलती और मैथ्यू थोड़ी बैटिंग करते तो शायद 160 रन का स्कोर बनता, लेकिन बीच में लगा नहीं मुझे कहीं भी इनकी कोई रिदम बन गया, एक मोमेंटम बना हुआ, इसी वजह से ये 120 रन पे धराशायी हो गई थी.
3: राइट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू राकेश, थैंक यू आशा फॉर ज्वाइनिंग अस इन फ्री हिट 20, एंड टू ऑल आवर लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस मिड इनिंग्स ब्रेक शो. बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेट हैंड ओवर द एंटायर कमेंट्री टू अ कमेंट्री पैनल हु शैल बी ज्वाइनिंग यू शॉर्टली. थैंक यू सो मच.
5: For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action.
6: Again, for the second half of the match here, where Australia will be chasing 126 to win this match here to enter the finals. Goodness me, what an occasion. Almost 3/4 of the stadium being packed, and they're watching a good encounter. Georgia Wall, the 22-year-old right-hander batter, will be there to face the first delivery. And the West Indies bowlers will have a real task in hand, because 125 is not a big score. Beth Mooney is the left-hander taking strike. And we'll have Henry starting the very first over, who's had taken 2 wickets in the last 5 matches, so not great in terms of wickets. But certainly what will hold the key here is, can you bowl the ball right on the stump line and keep the batters engaged and make them commit an error? But for Australia, they know that it's not going to be a very difficult task. With a slip and a gully slightly deep as the first delivery, she comes in and bowls a slower delivery into Wall, and Wall plays it into the mid-on region with no intent of even picking up a single there, and the score hasn't opened up as yet. So West Indies, what must they be thinking? Because the captain, when she came into bat, Matthews, they were full of hope. They hadn't lost a wicket in the power play, but suddenly we saw the wickets coming down, crashing like 9 pins. As here is Henry over the wicket, slow runner bowls wide outside the off stump. That should qualify for a wide, and the first run comes on the scoreboard as a wide outside the off stump delivery, trying to put in that extra piece of shoulder work, but that doesn't give her the desired benefits. So we've got 6 fielders on the offside, 3 on the onside. And in the first 6 overs, the power play, only 2 fielders permitted outside the 30-yard circle. And we've got those 2 fielders there, and we'll talk about them, as here is Henry coming into ball over the wicket. And this is right on the stump line, slow delivery. And Wall trying to play that ball onto the onside, doesn't get past the fielder there. And the score, 1 for the loss of no wicket. We've seen the 2 deliveries being bowled, including a wide. So 3 deliveries, but counted as 2. 1 extra run. And

0: West Indies bowlers would have to really go disciplined, because if they don't bowl with discipline, any extra run given will certainly cost them dear. As here is Henry now with a slow run up. Straight runner bowls in to Wall, and Wall gets his right on the stump line. Slower delivery there. She doesn't mind playing that defensive, and Australia doesn't mind going defensive, watching the bowlers carefully, watching the pitch conditions, and going slow at it. They're not going for any net run rate, because that doesn't count anyway. A win from here will take them to the finals, and Australia will face the winners between South Africa and England in the second semi-finals. The target is 126. Henry has bowled three dot deliveries. Here she bowling the next one. And this is up in the air. Lofted one over the deep mid-wicket fence there. We'll wait for the umpire's signal, because the ball's just about dropped on the rope. We'll have to see. The umpire still asking for a decision on whether that's a six or a four. Definitely. And that's a six.
1: Ye laga aabha ka chakka.
2: कमाल की शुरुआत की है, बिल्कुल स्लॉट पर बॉल थी और उसे सिर्फ एक दिशा दे दी, मोड़ दिया, सिर्फ उठा दिया, बहुत ही बढ़िया छक्का, 70 मीटर की दूरी। और ये है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, शुरुआत में थोड़ा रुककर और उसके बाद जैसे ही एक लूज बॉल मिली, बड़ा स्ट्रोक।
0: नेक्स्ट वन दैट्स टेकन ऑन द बैक फुट बिकॉज दैट इज बैक ऑफ द लेंथ एंड प्लेड इट डाउन इन टू द मिड विकेट रीजन, अ बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड एंड फ्लेचर द फील्डर देयर and the batters have crossed over for a single, taking the score up by one more to eight. And the way Wall has been batting, she's taken the bull by the horn. The way she picked up that one for a six in the very first over, that shows the grit and commitment by the two openers there. I don't think they'll wait to complete the 20 overs to win this match here. They would probably, given the option, complete this much earlier. The last delivery of the over to be bowled, and it'll be Beth Mooney to take strike, as the field setting has six fielders on the off, two on the on, one including the square leg, and one in the in front of square at the sweeper cover. As here is the next delivery, which is slow one, and plays it down, waiting for that one, goes and gets to the depth of the crease and plays it down into the on side, picked up a single as the mid-wicket fielder picks it up. The first over comes to a close, and Australia are nine for the loss of no wicket.
3: लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: तो पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है और दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी पारी की शुरुआत उन्होंने की है। जॉर्जिया वॉल जिस तरह की बल्लेबाजी करती हैं, काफी आक्रामक, और बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि वेस्ट इंडीज के बोलर्स किस तरह से अपने स्कोर को डिफेंस करने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि इतना कम स्कोर डिफेंड करना कोई आसान बात नहीं, वो भी जब सामने ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मशीन की तरह खेलता है, वो आपके सामने भले ही एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, कई टीमें ऐसी होती हैं जो शुरू से ही बहुत आक्रामक होने का प्रयास करती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, उनके बैटर्स, गेंद को मेरिट के हिसाब से। मैथ्यूज ने बॉलिंग की शुरुआत की है और ये उनका पहला ओवर है मूनी के लिए। मूनी ने हल्के से केवल गेंद को खेला था, कोई रन बनाने की वहां पर कोशिश नहीं। अपनी जगह पर वापस क्रीज पर लौटी, मैथ्यूज तैयार हैं इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए। दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक बॉल और इस गेंद को उठा दिया है। पावर प्ले है, आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के लिए आजाद हैं। शानदार चौका,
1: ये लगा आभा का चौका।
0: Mooney taking full advantage of that and makes hay while the sun shines. Off the back foot, goes deep into the crease and plays that ball across the line into the square leg region. No fielder there. And a very good well-earned boundary.
2: यहीं पर शायद गलती की थी वेस्ट इंडीज ने, जब उन्होंने पावर प्ले का समुचित इस्तेमाल नहीं किया था। आपको रन्स बनाने की जरूरत थी, शफल किया और हल्के से गेंद को निकाल दिया सीधे फाइन लेग की दिशा में, और ये गेंद भी ऐसा लगता है कि चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के एकदम नजदीक रुकी। अच्छी फील्डिंग,

0: एक पल के लिए लगा था कि जैसे ये चौका होना बिल्कुल निश्चित है, लेकिन फ्लेचर वहां पर मौजूद थी, बढ़िया फील्डिंग की उन्होंने और जो चौके की संभावना थी उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। इनको सीम के सहारे पकड़ करके हल्का सा ब्रेक कराने की कोशिश की और पूरी तरह से जो उसकी लंबाई है उसको भापा। 9 गेंदों पर अब तक 16 रन बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। मैथ्यूज ने अब तक 3 गेंदों में 7 रन दिए हैं, पिछली गेंद पर दौड़ करके 3 रन पूरे किए। ओवल में मौसम बिल्कुल साफ है, शुरुआत में थोड़ी सी हवा चल रही थी और इसीलिए टॉस जीत करके पहले बॉलिंग का फैसला किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इस बार गेंद को जो के मिडिल स्टंप पर थी हल्के से केवल शफल करते हुए खेला, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया। अगर आप स्पिन के इन पासों को बेहतर तरीके से स्वीप लगा सकते हैं तो फिर वो आपका एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है। वेस्ट इंडियन बैटर्स की शायद ये कमी रह गई, बहुत अच्छे स्वीप शॉट देखने को नहीं मिले आज। मैथ्यूज की गेंद थोड़ी सी पहले टप्पा खा गई और इस गेंद का इंतजार किया, बैकफुट पर गई और गेंद को सिर्फ कलाइयों के सहारे मोड़ दिया एक रन के लिए। रनों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही, पहले ओवर में 9 रन बने और दूसरे ओवर में 9 रन ऑलरेडी बन चुके हैं, यानी कि 18 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का सिलसिला जारी, वेस्ट इंडीज के पास विकल्प बहुत सीमित रह गए अब उस लिहाज से। और इस बार तकरीबन फुल टॉस हो सकती थी ओवर पिच, लेकिन उसका इंतजार किया, 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 18 बिना नुकसान।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: The third over in progress and Australia looking to be very confident. In contrast with the kind of batting we saw by the West Indies, they were under pressure. We saw 35 runs coming in the power play. I'm sure this is not going to be the scenario when Australia's batting, because they look to be very confident. They must have judged the wickets, the bowlers, as here is Henry coming into ball. And this time the left-handed Mooney, the ball is up in the air and just falls short of both the fielders there. And the ball taken on one drop, the fielder there. And the runs on the scoreboard takes it up to 20 for the loss of no wicket after 2.1 overs. Mooney getting a couple of runs. She's on 11 of 6 and Wall on 8 of 7. We've got one fielder there on the fence at sweeper cover and one at the almost the long on region. And we've got a third a gully, a backward point, cover point, sweeper. Then we've got the extra cover and a mid-off on the offside. But then that has to be really made use of. Here's Henry bowling the next one. That's almost into the slot. Plays onto the onside and they show a tremendous sense of taking a single there. Glasgow picks it up and Mooney has crossed over. So there was a good call from the non-striker's end, because the non-striker's end was a danger end because the ball was playing onto the whitish mid-on region. And Australians, if I look at, they are appearing to be in a hurry to get those runs. They don't want to wait. They want to play the new ball as much as possible and get as many runs on the scoreboard in the first 6 overs when the field restrictions apply. Only 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. The target is 126. West Indies made losing 7 wickets in the 20 overs and very good bowling. Ashley Gardner was the pick of the bowlers. Not just that, the number of dot balls bowled also counted a lot in keeping the score to this level of 125. Here's Henry coming into ball and this time a little scoop. The ball goes into the fine leg region and that's 4 runs.
3: ये लगा आभा का चौका।
0: क्या परफेक्ट स्ट्रोक था, पहले से अनुमान लगाया गेंद के टप्पे का और अपने आप को उस पोजीशन पर किया और एक शानदार स्कूप, पहले से कमिट हुई थी स्ट्रोक के लिए और एक नपा तुला बेहतरीन स्ट्रोक।
2: व्हाट अ दिल स्कूप दैट वाज, वी कॉल दिस एज अ नॉर्मल शॉट फ्रॉम तिलकरत्ने दिलशान ऑफ श्रीलंका हु यूज्ड टू प्ले दिस वन वेरी ऑफन एंड

0: waited for the ball, squared herself up and waited for the ball. She was in control of the shot and played it into the fine leg region. Henry comes in between, now bowls. That ball was right on the stump. The ball was an off cutter and plays it down into extra cover, and no runs taken. So in 2.4 overs, 25 on the scoreboard. I mean, the Australians know they are in business. After all, this is the team which is undefeated in this entire tournament. And they defeated South Africa, Bangladesh, Netherlands, Pakistan and India. And should this be the win, they are fancying this should be the sixth win in a row. And then they will face the winners between South Africa and England. And that indeed is going to be a very good match there. For the right-hander, there is a slip, backward point, cover point, extra cover, mid-off. There is a fielder there at short mid-on, a fielder there at deep mid-wicket and a deep square leg. So offside has nobody outside the 30-yard circle. Both the fielders on the 30 outside the 30-yard circle are on the onside. So expect some kind of setting up of the batter to make sure that they play on the offside, because they covered up the onside unless the batters go hammer and tong and play some daring shots. So 25 without loss, the target is 126. Henry comes in balls, and this time a better route being taken. That ball is up in the air, two drops inside the circle, and that's a boundary onto the long on region.
1: Ye laga abha ka choka.
2: जितने भी स्ट्रोक्स देखने को अब तक मिले हैं, पूरे परफेक्शन के साथ गेंद को एकदम स्ट्रेट खेला, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गई और उठा दिया बाउंड्री लाइन के नजदीक.
0: There was a certain style and power involved in that, and a level of confidence. Here's the next one into the slot, and that's got a wicket there. Bowled a yorker, and wall has to go back. Played all around the ball, and the ball knocks off the stump. So she's gone on 16, and Henry gets the first wicket at the score of 29.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: गरीब, जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
2: जॉर्जिया वॉल बाहर चली गई है. पहला विकेट गंवा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने. क्या ये विकेट वेस्ट इंडीज की उम्मीदों को वापस ला सकता है? क्या ये विकेट वेस्ट इंडीज की उम्मीदों में एक नई जान फूंक सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा. अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो उनका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो दुनिया की तमाम टीमों की तुलना में सबसे ज्यादा है. जॉर्जिया वॉल 153, मूनी 126, लिचफील्ड 140, पेरी 120. इस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ जब आप T20 इंटरनेशनल खेलते हैं तो जाहिर है आपकी टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहता है. तो पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिरा. जॉर्जिया वॉल, जिनका 18वां मैच था, कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है अभी उनके पास, और एक बड़ी पारी कन्वर्ट नहीं कर पाई. अच्छे खेल रही थी, तमाम जो भी स्ट्रोक उनके बल्ले से निकल रहे थे वो सधे हुए स्ट्रोक दिखाई दे रहे थे. लिचफील्ड आई है, अब स्ट्राइक लेंगी. और पहली गेंद को लिचफील्ड ने निकाल दिया, गैप्स का इस्तेमाल किया, बढ़िया चार.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: लिचफील्ड मेड श्योर दैट द फर्स्ट डिलीवरी शी गॉट इन द स्लॉट जस्ट प्ले दैट इनसाइड आउट शॉट इनटू द एक्स्ट्रा कवर रीजन एंड द वेरी फर्स्ट प्रोडक्टिव स्ट्रोक्स. And the confidence, Sanjay, look at that. She leaves the stump to the onside, creates width, plays that one inside out, and welcomes on the scoreboard the very first boundary of the very first ball that she faces.
2: बिल्कुल 33 रन एक विकेट के नुकसान पर ये स्कोर है.
0: मूनी करेक्शन.
2: बिल्कुल, मूनी के बल्ले से स्ट्रोक 8 गेंदों पर अब तक 16 रन. और इस बार फिर बल्ले को हल्की बैकलिफ्ट के साथ गेंद के ठीक पीछे लाई और हल्का सा केवल पुश किया. ये पहला विकेट गिरने के बाद अब लिचफील्ड खेलने के लिए आई हैं, हालांकि अब तक उन्हें स्ट्राइक मिला नहीं है. और इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल मूनी का. मूनी को शायद जमने के लिए टाइम नहीं लगता. कवर्स की दिशा में एक और चौका उनके बल्ले से.
1: ये लगा आभा का चौका।
0: So this ball again, Ram Harak being brought into bowling, and that was outside the off stump, steps out, and once again an inside out shot into the extra cover region. Very confident looking, as Sanjay, you explained that shot. She looked the confidence oozing out of her, consummate ease with which she played that boundary.
2: 124वां मुकाबला खेल रही है T20 International, 3658 रन मुनी के बल्ले से इससे पहले निकले, 117 नॉट आउट उनका सर्वाधिक स्कोर है। T20 क्रिकेट में अगर आप सेंचुरीज लगाते हैं तो वो बताता है कि आप किस कद के बल्लेबाज हैं। 126 स्ट्राइक रेट मुनी का, यहां पर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रही हैं, 10 गेंदों पर 20 रन बना चुकी हैं। दो चौके लग गए हैं रामारा के इस ओवर में, 3 गेंदों में अब तक, और इस बार गेंद का इंतजार किया और हल्के से केवल गेंद को मोड़ना चाहती थी। क्या पैड पर लगी गेंद, इंतजार करना होगा, शायद बल्ले से ही लग के गई है। 37 रन एक विकेट के नुकसान पर यह ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। चौथा ओवर चलता हुआ और जहां तक इस स्थिति में वेस्टइंडीज का सवाल है, उसने 26 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान के, पावर प्ले में ही पूरी तरह से वर्चस्व हासिल कर लिया था वेस्टइंडीज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पावर प्ले में जब आप रन नहीं बना सके, कुल मिलाकर 35 रन बनाए, लगातार डॉट बॉल्स खेली, तो फिर आपके लिए मुश्किलों की दावत आप खुद दे चुके थे। इस बार रक्षात्मक तरीके से रोका, जरूरी नहीं कि आप हर गेंद पर बड़े स्ट्रोक लें, और लिचफील्ड पहली गेंद पर स्ट्राइक ले रही थी। लिचफील्ड का जहां तक सवाल है, अपना 36वां मैच खेल रही है, 140 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि आक्रामकता में कोई कमी नहीं, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को निकाला बैकवर्ड स्क्वायले की दिशा में, लेकिन वहां फील्डर मौजूद। 4 ओवर समाप्त हुए और रन बने 39 एक विकेट के नुकसान पर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: 10 runs of the last over, that was the productivity, and it was Beth Mooney everywhere. She never, you know, hesitated playing those shots when a delivery which was in the slot was bowled, and she hammered and prevailed over the bowlers, and the last over was very productive. And this strictly in contrast with the way West Indies batted. They scored 35 in the first 6 overs, but it looks as though Australia are in a hurry to get that victory through and get to the finals in style. For Australia, it's another way to get into the finals. As here is Matthews coming into ball, almost getting the batter on the front foot, giving it a bit of air, but then the batter was confident, picking it up right in the center of the bat, plays it down into extra cover region, picked up there, there's a fielder. So one fielder outside the 30-yard circle in that sweeper area, and the other one into the square leg region. The others bought 6 on the off, 3 on the on, including these two. So you got a typical field setting. So on the offside, it's power packed. Whereas the left hander now, Mooney on 21 to face up to Matthews, who's bowling right arm around the wicket. We've got mid on and mid wicket straight in front. But then if you play over them, the ball is certainly bound for the fence for 4 or a 6, either way. As here is Matthews bowling the next one. She steps out, drives, corrects her stroke there. She was trying to play that one as an aggressive shot, but just about checks herself and plays it down onto the offside. And the ball picked up there by Joseph. Before that, the batters have crossed her for a single, taking the score up to 41 for the loss of one wicket. The target is 126. Doesn't look to be a target which will concern the Australians. As here is Matthews bowling the next one. That's a wild delivery, offline delivery outside the off stump. The ball picked up there on the fence. And that was Alia Elini. The batters have crossed for a couple of more runs. So the fielders on the fence really kept busy, because 6 overs, till then you've got just 2 fielders outside the 30-yard circle, and they have to literally do a lot of running around both ways to pick up the ball. So the Australian side looking confident. Here's the next one. She's going for a reverse sweep. A big appeal for leg before, and Kim Cotton, the umpire, says no to that one. And probably is that a review? We're just going to see. Yes, it's a review. So the West Indies have taken a review, because a reverse sweep was attempted, and the bowler feels confident because the captain herself is the bowler.

0: But then I do not know what made the batter Lynchfield go for the reverse sweep. There was no such compulsions to go for that reverse. It was not required. But then the first impression is, yes, the ultraide says there was no contact between the bat and ball. There was quite a big daylight between the bat and ball. Now it's all left to the umpire to see where was the ball heading. If it's onto the stumps, goodbye to Lynchfield.
1: Acha review. लेकिन किस्मत अच्छी. क्या लेग स्टंप छोड़ रही थी, चूंकि अंपायर का कॉल था तो चलिए यहां पर जाना पड़ेगा लिंचफील्ड को. लिंचफील्ड ने स्ट्रोक को लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी की, गलती की, रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया. अभी आई थी, जमने का मौका था, लेकिन आते ही उन्होंने एक गलती की और उसका खमियाजा चुकाया. मैथ्यूज का जो एक उनका यकीन था इस विकेट पर, वो पूरी तरह से सार्थक साबित होता हुआ. चार रन बनाए लिंचफील्ड ने और दूसरा विकेट गवा दिया ऑस्ट्रेलिया ने.
0: Yes, certainly that stroke wasn't really justified because you didn't have to propel the score, and she tried to just about manufacture a stroke through a reverse, and unfortunately for her, the bat wasn't coming in contact anywhere, and the ball was heading on to the top of the stumps, and more than 50% of the ball was hitting the stumps, and no doubt in the minds of the umpire, and that was the correct review taken. No, sometimes even to take a review you need a big heart, and the captain immediately took a review. She didn't even blink an eyelid, and she said, yes, I'll take a review. And sometimes you feel very happy when your review gets accepted as far as the bowler is concerned. Even the wicket keeper, she also said, yes, take the review. And so their two reviews are still intact. The Australians will have to rethink now. Don't go for indiscreet stroke play. Don't throw caution to the wind just because your run rate is more, just because you think that you may be winning the match. You never know. As here is Matthews now bowling over the wicket to the right-hander. That ball played onto the back foot, waited for the ball, short of a length, played on, misfield at the mid-wicket region, eventually picked up at the deep mid-wicket, and the batters have taken advantage to cross over for a single, taking the score up by one more. But one thing one must say very, very carefully, that no match is over till the last ball is bowled. Go back to the World Cup 1983. That Indian score of 183, West Indies probably underestimated and lost that match. So 44 for the loss of 2 wickets in 4.5 overs. Lynchfield was out for 4 in the same very over, and off the 4th delivery, just about 6 runs given so far. Good bowling by Matthews. Last delivery, and the left-handed Mooney just tucks it away, playing it on to the onside. The wicketkeeper had to come to the short mid-wicket region, pick it up, take a single. 5 overs gone, and Australia now 45 for the loss of 2 wickets.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली. जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तो पावर प्ले का भी एक ओवर बाकी है और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 45 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर. 2 विकेट हासिल करना पावर प्ले में वेस्ट इंडीज की निश्चित तौर पर सफलता है, लेकिन चूंकि उनके पास इतना बड़ा स्कोर नहीं है जिसे उनके बोलर्स इस सफलता के बाद भी आसानी से डिफेंड कर सकें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं. ये क्रिकेट है और यहां पर आखिरी गेंद तक आप कह नहीं सकते कि मुकाबले का परिणाम क्या होगा. क्लैक्सटन अब आई है गेंदबाजी के लिए. 6th ओवर, पहली गेंद, टारगेट है 126 का. शॉर्ट गेंद, और इस गेंद को गैप्स का इस्तेमाल किया, बढ़िया निकाल दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए.
0: जेंटल लुकिंग स्ट्रोक, एंड दिस इज क्लैक्सटन्स फर्स्ट ओवर इन दिस वर्ल्ड कप. If he bowled that kind of a delivery, Sanjay, which is short enough, so short that the batter can at ease pick up that one and just about play it down using the pace of the ball for 4 runs.
1: पहली गेंद थी, शायद गेंद की लंबाई पर उस तरह से नियंत्रण नहीं ले पाई, लेकिन यही मौके होते हैं बैटर्स को किसी बॉलर का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए. क्लैक्सटन, 6th ओवर की दूसरी गेंद, अर्धशतक के नजदीक पहुंच रही है.

0: ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। कुल मिलाकर 6 चौके और 1 छक्का अब तक लग चुका इस पारी के अंदर। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने जब विश्व कप जीता था तो पेरी ने विनिंग स्ट्रोक लगाया था चौका, और वही पेरी आज भी अपनी टीम के साथ यहां मौजूद।
1: As the next delivery, that shot of a length and off the back foot, just plays it across at the onside. The fielder in hot pursuit but can't get to it. And that's a boundary onto the onside to the mid-on region.
2: ये लगा आभा का चौका।
0: तो एक और चौका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर। रनों की रफ्तार में कहीं कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा। मुनी जिस तरह से उनकी निगाहें जमी हुई हैं, कोई भी स्ट्रोक खेलने में उन्हें परेशानी नहीं हो रही। अच्छा खासा तजुर्बा है मुनी के पास और उस तजुर्बे का यहां पर भरपूर लाभ लेते हुए बढ़िया चौका, और मुनी पहुंच गई है 15 गेंदों पर 31 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पर। क्लैक्सटन पहली गेंद पर 4 दिया, दूसरी गेंद पर 4 दिया और ये 3री गेंद क्लैक्सटन की, लेकिन चलिए वहां पर फील्डर मौजूद थी और इसलिए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई। क्लैक्सटन का ये पहला ओवर है, अब तक अगर आप देखें तो 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। हेनरी है, मैथ्यूज हैं, रमार्क हैं और इसके अलावा क्लैक्सटन। और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है, ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद, और जब आप इतनी विड देंगी तो ये 4 लगेगा। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: ऑस्ट्रेलिया अब 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद का इंतजार किया, बहुत ज्यादा विड दी थी प्रेम।
1: वेरी क्लेवरली पुट्स इट अक्रॉस एंड यूज़ द पेस ऑफ द बॉल देयर एंड एक्सटेंड्स द बैट टू हर लेफ्ट फार अवे फ्रॉम द बॉडी, इन कंट्रोल ऑफ द शॉट एंड जस्ट प्लेस इट वेरी लेट एंड द बॉल स्क्वीज़ेस थ्रू द गैप। दैट इज अ वेरी वेल प्लेस्ड शॉट।
0: क्लैक्सटन काफी खर्चीली साबित हो रही है, अब तक 3 चौके दे दिए उन्होंने इस ओवर में। आए हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा में। हालांकि ये 2 रन बनेंगे वहां पर जब तक गेंद वापस पहुंचती, तो कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च कर चुकी हैं क्लैक्सटन अपने इस पहले ओवर में। और ये विकल्पहीनता की स्थिति है, क्या कप्तान अगले ओवर में फिर क्लैक्सटन का इस्तेमाल करेंगी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करेंगे? उनके पास विकल्प हैं, लेकिन वो विकल्प कितने कारगर साबित होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी तब जबकि आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। सिर्फ 67 रन चाहिए, 85 गेंदें बाकी, बार बार विड दे रही हैं और उसका बहुत सही इस्तेमाल गैप्स का। 1 और 4।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: So six was gone, 63 for 2, drinks on the field, but misery for the West Indies side. One must say that 18 runs of the last over from Claxton, who bowled her first over in this tournament, and she was nowhere in the line of length, and the batters prevailed, and Mooney obviously making sure that she tormented the bowlers, pulverized the bowling attack. And Sanjay, something very interesting, the 2 most dangerous batters are on the field right now for Australia. You've got Perry, who's got a strike rate of 140 plus, and you have got Mooney, who's got a strike rate of 137 plus. Both of them, Perry had 2 half centuries and Mooney had 1 half century this particular series, so they are in a perfect mode to strike, and why not?
0: बिल्कुल, खासतौर पर एलिस पेरी का अगर आप जिक्र करें, और मूनी, ये दोनों काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बेथ मूनी अपना 124वां मैच खेल रही हैं और एलिस पेरी 180वां मैच खेल रही हैं, तो ये बताता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों में आप शामिल करना चाहें तो ये प्लेयर्स निश्चित तौर पर हैं, और ये दोनों सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और अपना अनुभव जिस तरह से प्रदर्शित करती हैं और उस अनुभव का जिस तरह से अपनी टीम को लाभ देती हैं, वो भी सचमुच काबिले तारीफ है।
1: एंड समटाइम्स आई वंडर आर वी मैच वॉचिंग द सेम मैच ऑन द सेम फील्ड, बिकॉज ऑन द सेम वेरी ग्राउंड वेस्ट इंडीज वर स्ट्रगलिंग एंड यू फाइंड दीज 2 बैटर्स मूनी एंड फेरी प्लेइंग ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, बोनाफाइडी स्ट्रोक्स।
0: बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक टीम की जगह पर एक मशीन कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उनके बैटर्स, उनके बोलर्स, सब अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मशीन की तरह खेलते हैं, चाहे मुकाबला कोई भी हो। आप पांच के पांचों मैचेस लीग दौड़ के देख लें और उसके बाद ये छठा मुकाबला भी तकरीबन उसी तर्ज पर चलता हो।
1: एब्सोल्युटली, आई मीन नो अदर फैक्टर कैन रियली रीडिफाइन द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड फेमस एनालिस्ट सेज दैट यू नो ऑस्ट्रेलिया 63 for 2, इट्स गॉट 9 बाउंड्रीज, 36 रन्स ऑफ फोर्स एंड अ सिक्स। सो यू कैन इमेजिन that 42 runs of this has come through boundaries and a six, out of which just about 11 dot deliveries. That is the way the batters have batted, playing some authentic cricket. They haven't played more often than not across the line. They have selected the right shot, maybe over the 30-yard fielders, or picked up the gap well, and played with a certain level of accuracy and commitment.
0: Nisandeh, tareef karni hogi Australia ki. Ab dekhna hoga ke final mein kaun pahunchta hai, Dakshin Afrika ya England. और उन दोनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। 2010 पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद सातवीं बार वर्ल्ड कप जीतेंगे अगर ये टूर्नामेंट को जीतते हैं, खिताब जीतते हैं। और तमाम जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हैं सब में वो सेमीफाइनल में पहुंचे, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन का उनका सिलसिला जारी।
1: एंड इफ इंग्लैंड विंस, आई एम जस्ट सेइंग अज्यूमिंग, then it will be another women's ashes repetition. And if South Africa comes in and they play against Australia, Australia has already defeated South Africa once in this tournament, being from the same group. So one must say that it's going to be a contest either way. But England has really done well for itself this entire tournament. And if England and Australia clash, I'm sure going to be a marquee kind of a match in the final. It's going to be a great crowd catcher. So 6 matches, 8 wickets for Elia Eleni. And she is coming into bowl. Wonder what she'll be doing. She's a seam bowler. Over the wicket, right arm. Balls. Short of a length. Width of her. Good fielding. Saves the blushes at the backward point region. Else that ball would have gone for a wonderful boundary of the backward point region. So much of width offered outside the off stump. The batter was almost prompted to go away from the line and play a hard shot, but well picked up there at backward point. So while this conflict goes on, so the halfway mark has been reached as the next delivery. Once again, the fielder there is Stephanie Taylor at the backward point region and picks up no runs taken. We are 63 for 2, and Shama just reminds me that it's halfway through. Another 63 more runs, and that will take them to the finals once more. But the West Indies will have to do something really out of the skins if they have to bring in some kind of positivity, which now looks slightly diminishing with each run scored. As here is Eleni coming into ball over the wicket to Perry. Perry of the backward strikes the ball, goes into the extra cover region. There's a fielder there who picks it up, Joseph, and no runs taken. The West Indies have a reason to worry. Obviously, if you just put about 125 on the scoreboard and see the difference in batting styles, they were struggling with the strokes, trying to play more often than not across the line, whereas Australians are very disciplined in the stroke play as well. Shot selection is very good. As here is Eleni bowling, another back of the length, and the batter goes on the back foot and thumps the ball into the mid-wicket region. Once again, the captain comes, Matthews picks it up and allows not even the thought of a single on that occasion, and the score still remains. So well, Australia looking confident. They have maintained their momentum. They're making sure that they move in a very structured way. They don't have to commit harakiri. They don't have to manufacture a stroke or play indiscreet cricket. They just have to pace their innings properly and they will cross over that 125. Here is Eleni bowling in the next one, and this time she once again bowls a slow delivery and the batter very unable to strike. And what a wonderful over so far. The best of the overs from West Indies, Eleni. 5 dot deliveries. And if this is a dot, I think this should be the first maiden over of the match. We haven't seen a maiden over, and a T20 to have a maiden over. Obviously not at this time, because the option is not to bowl a maiden over. You have to get a wicket. That's more important. Eleni comes into ball. Over the wicket to the right-handed Perry, who's on 1 of 6. Balls of next, the last delivery. And this time she drives and gets a single. So the last delivery gets a single. Obviously not a maiden over. And that takes the score up to 64 for 2 after 7 overs, Australia.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मरियम, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मरियम, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7। तुम
0: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64-2। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः बेरी को और गार्टनर ने उनकी जगह ली है। फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी ने। फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट, बेहतर इकॉनमी, लेकिन आज उस इकॉनमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। इस पर ऑफ स्टंप पर टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट। हेनरी जब तक गेंद को फील करती दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया। और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलिने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही। सिर्फ इकलौता रन बना था, वो भी आखिरी गेंद पर, अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलिने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था, तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए। 66-2 फ्लेचर को लगाया गया है। फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है लेने के बाद। फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ बॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली। कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की, लेकिन कामयाब नहीं, एक रन लेने से नहीं रोक सकी। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67-2 विकेट पर। पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था। फ्लेचर, पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने। पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से। लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेम को खेलना चाहती थी, वाइड का इशारा आना चाहिए, आया, एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए 76 गेंदों पर। फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी तो वो परेशानी का सबब। पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, बल्कि एक नहीं 2 रन जब तक गेंद फील्ड होकर के आती, काफी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफी कॉन्फिडेंट बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोई परेशानी नहीं और हल्के से केवल गेंद को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिला करके, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
1: 71 for 2 and 7.4 overs. Fletcher, who's got 4 wickets from 5 matches, but for the moment the objective is to keep the batters silenced. You got Gardner, 4 matches and 112 runs, strike rate being 169.6, so another batter with a very, very devastating kind of a strike rate.
0: To Fletcher ab tak kul milakar सात रन दे चुकी उनकी ये गेंद, इस बार फिर फ्लाइट कराने की कोशिश, हल्का सा सफल किया, मिड विकेट की दिशा में गेम को खेला, इकलौता रन, हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है, 105वां मैच अपना खेल रही है गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले, हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती, 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ 29 गेंदों पर, वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। ट्रैकफुट पर कहीं इस बार गेंद को मोड़ा इकलौते रन के लिए, 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद 73-2 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है और अब सिर्फ 53 रन चाहिए 72 गेंदों से। गार्डनर 4 रन पर, मूनी खेल रही है एक अच्छी पारी, 45 पर पहुंच गई है मूनी, और ये स्कोर उन्हें निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट था और थोड़ी सी ओवर पिच थी, ड्राइव किया था गेंद को लेकिन गैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे प्लेयर के पास कोई रन नहीं।
1: 73 for 2 एंड दे आर क्रूजिंग एक्सेप्ट फॉर दैट वन ओवर व्हिच ऑलमोस्ट वेंट एज अ मेड एंड पेरी वाज प्लेइंग those five deliveries as dot ball, and thereafter immediately after that over she went back, she was uncomfortable, some minor niggle around, as here is Ellen coming into bowl over the wicket, straight run up and balls outside the leg stump delivery, the batter wasn't in control of that one but plays it down onto the own side and crosses over for a single. Mooney goes up to 46. Should she get four more runs, this should be her second half century this World Cup. Well, one must say that she's been a very consistent batter with 138 almost as a strike rate, which is very encouraging. So now Australia need 52 of 70 deliveries, which looks very, very simple when you do the reverse countdown with 8 wickets in hand. So that should be a very positive motivation for the Australians, who went on very competitive in this match. As here is Ellen coming into bowl, third delivery over the wicket, and that's width offered, and the batter of the back foot plays it down into the back foot point region, the ball rushing to the fence, cruising past the field of four runs.
2: ये लगा आभा का चौका,
0: बिल्कुल परफेक्ट गेटिंग शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेंद के ठीक पीछे गई और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला सीधे चार रनों के लिए।
1: What a well place shot that was, almost perpendicular to the pitch, and Ellen couldn't believe it. Obviously, if you offer this kind of a width, who's going to spare you? That was almost like a hit me delivery, as here is she running in away from us over the wicket, almost a slow delivery in the slot, but the batter wasn't able to cross the fielder there at whitish long off region, picked up there, but in the process they have scrambled for a single. Glasgow tried every bit of her effort to save the single but just couldn't do that because the non-striker had already called for the shot, the run there, because she was running, the striker was running to the danger end, so the call was absolutely well calibrated and a single taken. So Beth Mooney on 46, and those four runs will take her to the score of a half century. A higher score this season had been 74, not out, as here is the next delivery, which is right outside the off stump, plays it down into backward of point, the ball picked up there, and no runs taken. The fielder there was Karishma Ramharak, who has been brought in this match in place of Ashwini Munisar. Of course, she couldn't do much with the ball, as here is the last delivery of the over, 79 for 2. Australia need 47 more runs of 67 deliveries, as Ellen comes in and bowls the last delivery wide outside the leg stump, and the wicketkeeper misses, that's wide, and that's going to be 5 runs unless it's picked up. Yes, it's picked up, so that's 2 runs, but then a wide, That was a completely offline rank bat delivery. The keeper misses and lucky that the fielder was out there and no boundary was scored. But it doesn't matter for Australia because they are not in a great hurry. Of course, they want to.

0: to complete the process as soon as possible, not linger on, and take it on to the 20th over. 81 for 2 after 8.5 overs. Need 45 runs from 67 deliveries. Last delivery, slowed one, slower delivery, strikes into the wide-ish mid-off, and Gardner couldn't cross the fielder. So dot delivery, 7 runs of the over, 81 for 2 after 9 overs Australia.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: अरे मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: अरे मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 10वें ओवर की पहली गेंद ही वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर। फ्लेचर जिस गति से गेंदें करती हैं, उस गति के हिसाब से उन्हें गेंद पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद डाल दी फ्लेचर ने और इत्मीनान के साथ वहां पर एक अतिरिक्त रन जुटा दिया। जहां तक मूनी का सवाल है, मूनी ने आज अपने 3700 रन पूरे किए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान बैटिंग जो उनका लाइनअप है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। फ्लेचर की गेंद और इस बार स्टंप पर लेकर के आई। गार्डनर ने हल्का सा केवल अपने पल्ले भर से लटने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया को अभी 43 रन की जरूरत है और 65 गेंदें बाकी हैं। टी20 क्रिकेट में इससे आसान स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। इस बार कदमों का इस्तेमाल गार्डनर का और गेंद सीधे 6 रनों के लिए।
5: ये लगा आभा का छक्का।
0: A great shot and great confidence oozing, and played that shot with consummate ease as the delivery was bold. She was anticipating, stepped out, the footwork was important, picked up on a half volley and just about timed it well over the long on region.
4: A badhiya stroke और एक बड़ा सिक्सर। आज मैच में बहुत ज्यादा सिक्सर देखने को नहीं मिले। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा या ज्यादा से ज्यादा तीसरा छक्का होगा। क्षमा इस समय बिल्कुल ये दूसरा सिक्सर था ऑस्ट्रेलिया की ओर से। एक छक्का वेस्ट इंडीज की ओर से लगा था, तो कुल मिलाकर 3 सिक्सर्स। 10वां ओवर चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 89 हो गया है, यानी कि 90 की तहलीज पर। कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइटेड गेंद और एक बार फिर टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
5: ये लगा आभा का चौका।
0: व्हाट अ ग्रेसफुल इनसाइड आउट शॉट संजय। पिक्ड अप दैट लेंथ ब्यूटीफुली एंड प्लेड दैट विद कंज्यूमेट ईज। जस्ट स्टेप्स अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ द बॉल एंड दैट कॉन्फिडेंट लुकिंग इनसाइड आउट शॉट।
4: ऑफ स्टंप के बाहर लगातार विट दी है फ्लेचर ने और उसका भरपूर इस्तेमाल किया है गार्डनर ने। गार्डनर अब 9 गेंदों पर 19 रन बना चुकी हैं। एक बार फिर फ्लाइट, लगातार फ्लाइट करा रही, लेकिन अगर आप स्टंप पर फ्लाइट कराएं तो चलिए उसको रोकने में आपको मदद मिलेगी। हल्का सा केवल पुश था इकलौते रन के लिए। हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, लेकिन एक शानदार छक्का और उसके बाद एक बाउंड्रीज ओवर में आई है फ्लेचर की। तो काफी खर्चीला ओवर फ्लेचर का अब तक। 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें बाकी, सिर्फ 35 रन की दरकार। गार्डनर पहुंच गई 20 पर और मुनी अपने अर्धशतक की दहलीज पर। 46 रन बना चुकी है मुनी। पर शफल किया और हल्के से केवल गेंद को मोड़ दिया। 1 रन लेना चाहती थी, लेकिन दूसरे रन का भी मौका दिखा और उस मौके को उन्होंने तुरंत अपने हक में कन्वर्ट किया। बढ़िया दूसरा रन दोनों के बीच, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकेट के बीच में। इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 96 2 विकेट के नुकसान पर। 100 रनों की दहलीज पर पहुंच रहा है और 126 रन बनाने ऑस्ट्रेलिया को, इकलौता रन। और ये आखिरी गेंद थी 10 ओवर के बाद। ऑस्ट्रेलिया अब 97 पर 2।
3: सकती है।

0: So after 10 overs, the score is much above expectation as far as the West Indies total is concerned. We're going to make a quick comparison of what were West Indies score when they were 10 overs old. Australia 97 for the loss of 2 wickets, and they are bulldozing through, whereas West Indies were 58 after 10 overs. That should tell you the state of affairs. A scorer Chhama was working out on that, because we knew there's a big disparity between those runs after 10 overs. Where is 58 and where is 97? Almost like a 40 runs gap. Almost 40, I'm saying. So the Australians really prevailing over, and the willow prevailing over the leather as far as the Australian batting is concerned. And they've made sure that they pulverized the bowling attack. And as and when a loose delivery was bowled or a hittable delivery was bowled, bowled in the slot or wide, they made use of it and encashed upon the opportunity. 10 overs, 97 for 2. And now you require 29 more runs to win. As here is the first delivery of a fresh over from the captain there, Matthews, to Mooney. Mooney tries to place on the offside. She's waiting for one more run to complete her second half century in this particular World Cup in England. And obviously she's been the linchpin of the side there. She, Perry, Ash Gardner, they've all been very impactful players. As here is the next delivery, and that's been played on the onside, and she gets a 15 style, playing into the mid-wicket region before the ball is picked up, to the acclaim of the colleagues of hers in the dugout, each one clapping. And Mooney's 30th 50, that was our statistician Pradeep Dumre telling us, in the 124th match, 117 being our highest, and two centuries in that one. And one must say that she's really done a useful contribution for the side. Another information coming from a statistician once again, that 850 at the Oval. We'll talk about that. Wyatt has 3, Mandana has 1, Perry has 1, Taylor 1, Dunkley 1, and Mooney. This is the half century she's got for the first time here. As here is the first, the third delivery from Matthews over the wicket, tries to spin it across and plays it down to the own side, to the mid-on region, and picks up a single on that occasion, and the score reaches 99 for 2. So second half century for Mooney. That will certainly bolster her confidence and give her the much required energy to enter into the finals. As here is she bowling around the wicket, changes the line of attack for the left-hander, and this is driven into the extra cover region. The fielder will miss it, and that's 4 runs. All efforts by the fielder there to pick up that ball, and that was Deandra Dottin, and a boundary, 4 runs.
1: Ye laga aadha ka chauka.
0: The Australian batters absolutely professional in their way of looking at it. So the 100 runs coming in 10.4 overs, whereas the West Indies got the 100 in 17.5 overs. That's the difference. 7 overs clearly the difference, as the next delivery from Matthews played onto the offside, gently tucked in away by Mooney, and crosses over for a single, taking the score up to 104 for the loss of 2 wickets. So this partnership has already yielded 40 runs of 26 deliveries, and both these are still going strong. They played some very authentic bona fide cricket, not making any obvious errors. They're selecting the right shots. The next delivery, which is bowled short, and a bit of bounce onto that one, shoulder height, and the right-handed Gardner plays it down into Joseph, standing there at short fine leg, picks up a single to end up the 11th over. Australia now 105 for the loss of 2 wickets. Mooney 55, Gardner 22.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: 12वें ओवर की अब शुरुआत हो रही है और गार्टनर 22, मूनी 55, दोनों सॉलिड तरीके से इस विकेट पर अब टिके हुए हैं। कोई ऐसा लगता नहीं कि अब मुश्किलों का दौर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुकाबला तकरीबन फाइनल में दस्तक देने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, पैरों पर गेंद थी स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक गेंद वहां पर फील्ड होती अलेने के हाथों दौड़ करके रन पूरे किए 106 दो विकेट के नुकसान पर। तो अब सिर्फ 20 रन बचे हैं, 20 रन और बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। और जाहिर है कि जब आप इतने विकेट्स लेकर के 20 रन आपको बनाने हैं और सिर्फ 12वां ओवर चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है उस स्थिति में अब कोई शायद चमत्कार ही वेस्ट इंडीज को वापस ला सकता है 106 पर। तो गार्टनर 23, मूनी 55, और ओवल का मैदान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीलियां की जा रही हैं, खासतौर पर जो ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट है उसमें ड्राइव किया था, हाफ पॉली का ड्राइव था और एक रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरे रन के लिए स्टार्ट लेना चाहती थी लेकिन कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, वो 19 रन बाकी हैं, 52 गेंदें बाकी हैं। मुनी अर्धशतक अपना पूरा कर चुकी हैं। अगर आप मुनी का करियर का अर्धशतक देखें तो एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाए, और इस बार अच्छा ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव। यहां पर रन मिलेगा सिर्फ एक लौता क्योंकि हेनरी वहां मौजूद, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। भारत साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त खाया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे पराजित किया था, और इन दो पराजय की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। बल्ले के निचले हिस्से से लगा लेकिन रन जरूर मिलेंगे, यहां पर एक रन की गुंजाइश थी, लेकिन इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे किए। वो आक्रामकता जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स में होनी चाहिए फिलहाल नदारद लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर वो ये मान चुके हैं कि ये मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है इस समय यूरोप में, आप लगातार इन खबरों को सुन भी रहे होंगे, तो उसका असर यहां स्टेडियम में मौजूद दर्शकों पर भी देखने को मिल रहा है।
0: सर्टनली यूरोप गोइंग थ्रू अ टफ समर दिस सीजन, 41.5 डिग्रीज एल्सवेयर, एंड द स्कोर नाउ रीचेस नेल्सन एट 111 विद दैट सिंगल जस्ट टक्ड अवे ऑन साइड, एंड ग्लासगो द फील्डर एंड राम हैरिस गिविंग अवे 6 रन्स ऑफ 5 डिलीवरीज, अ बेटर ओवर फ्रॉम हर कंपैरेटिवली, बट नाउ ऑस्ट्रेलिया जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम winning this match. Here's the next delivery from Ramparak, plays it onto the onside, just pushes that onto the onside to pick up a couple of runs to end the over. 12 overs gone, a single rather, not the second run, 112 for the loss of 2 wickets after 12 overs.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: So well, for the moment, Australia cruising past the expectations of the West Indies that they would do any such thing to stop their run rate, but not really. 14 runs of 48 deliveries, as here's the first delivery of a fresh over. That's outside the off stump, plays it down into the offside to the extra cover region, picked up, and the batters... Mooney has crossed over for a couple of runs, taking the score of hers to 59 and the score to 113 for the loss of 2 wickets. Slowly but steadily, Gardner and Mooney taking Australia to the step closer to another finals. They won six of them in the T20 format, and entering the finals once again, and to face the winners between the England-South Africa match in the second semi-finals. 13 runs of 47 deliveries. Now you can see the equation reverse. How easy that's going to be, because they got wickets in hand. Second delivery of the fresh over, and that's been played onto the own side to the backward square. Before the ball's picked up, the batters have comfortably crossed over for a single day. So runs are coming in at ease. They're picking up the gaps well. They're playing some daring looking shots, and I've seen most of the shots are in the right place and not to the fielder. The batters are executing the strokes to perfection. Shot selection seem to be pretty good. Okay, they're playing in front of the square of the wicket, using footwork, playing late, or pulling or cutting the balls with so much of perfection. We'll still a few more runs before Australia gets to win. Henry the bowler. The partnership in the meantime of 35 deliveries, 50 on the scoreboard. The partnership between Ash Gardner and Beth Mooley, and both of them making sure that they torment the bowlers and kept on denying any wickets. As here is Henry over the wicket bowling in, and that's a full toss outside the leg stump. Rank bat delivery played onto the own side to the back of the square, and before the fielder could come and pick it up, the batters have easily scrambled for the second run as well, and that takes the score up two more, and reaches up to 116 for the loss of two wickets in 12.3 overs. And at this rate, I think talking about 20 overs is a far-fetched dream for the West Indies. Maybe another 2 to 3 overs. That's what they require to get the winning runs on the scoreboard. Target 126, they're 116. 10 more runs to go. 60 to Mooney, 26 to Gardner. 10 runs of 45 deliveries. And that's because of these two batsmen who have really done well. As this is the next delivery, scooped it high over the long off region. Gardner and gets a spectacular boundary. Nice looking shot there, almost like an extended defensive stroke there. No great effect, just about the path of the bat, the swing of the bat that comes down, meets in the center of the blade, and the ball goes over the long off region, over the fielder at the 30-yard circle, and all that fielder did was just gaze at that one and let the ball cross over for a boundary. So that takes the score to 120. Six more runs to get 126. Here's the next one. That's played straight but rolling in to Glasgow standing there. And one more run taken to take the score up to 121. And lo behold, that's a no ball as well. So 122. Two more deliveries to go before this match gets into the finals, and Australia walks over into the final with a spectacular win with just about four more runs, and which is as easy as that. That last delivery, not just in a ball, but also a run coming onto that one. So, well, the writing on the wall is very, very clear now. West Indies will have to take a flight back home tomorrow, and Australia will get comfortably into the finals. As here is Henry bowling the fifth delivery, and this is outside the leg stump, played it onto the on side. The fielder will come and pack up that one, pick it up nicely, and one more run of the scorecard. So the score reads 123 for the loss of two wickets. One more delivery to complete over number 13, and this over has seen two leg byes, one no ball, and one more delivery to complete the 13th over. We're still waiting for the last delivery to be bowled. If that's a boundary, then this should be curtains for West Indies. They brought all the fielders close as possible, almost all in the 30-yard circle, because there is no use now defending the fence as Henry comes and bowls this one. And that ball has been played onto the onside to the square leg region, across the fence. And that's 127. That's a target of 126 overall by one extra run there. So Australia wins this match by 8 wickets and
1: ये लगा आभा का चौका.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: जानिए आभा के बारे में. यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So what a great victory for the Australian side. 127 for 2 and Sanjay. If you look at the main reasons why the West Indies, with short selection, playing too far across the line, giving those dot deliveries, that prompted the Australian side to do well as far as bowling and fielding is concerned, and look at the result now.
7: बिल्कुल, एक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फेवर में ये था कि उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उन्होंने जिस तरह से डॉट बॉल्स डाली और लगातार किफायत बरती, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस था। वो प्रेशर जब वेस्ट इंडियन बैटर्स के ऊपर आया तो उसके बाद वो चरमरा गई पूरी की पूरी टीम, और जाहिर है कि उसके बाद वो एक बड़ा लक्ष्य नहीं दे सके जो हमने देखा, और आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार जीत दर्ज करके सीधे फाइनल में जगह बना ली है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
5: प्लेयर ऑफ द मैच

0: And with that, Australia have gone on to win the first semi-final match that was held against West Indies in mere 13 overs, chasing a target of 125. They needed 126 to win, and the Australians made it look like a cakewalk because they were able to chase the target within 13 overs. I'm Sakshi Mandwal, welcoming all you listeners to our show Player of the Match for the ongoing ICC Presents Women's T20 World Cup. Joining me over here is my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. तो जहाँ तक World Cup Finals की बात है, वहाँ पर एक टीम तो तय हो गई, ऑस्ट्रेलिया. आज बहुत ही डोमिनेंट जीत, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से वेस्ट इंडीज को हरा दिया है. और चर्चा करने के लिए यहाँ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं आशा रावत, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर. नमस्कार. राकेश राव, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग. और साथ ही रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बीसीसीआई कोच. तो आशा जी, बधाई दे दें ऑस्ट्रेलिया को.
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से मैं कह ही रही थी कि अगर इस मैच को वेस्ट इंडीज को जीतना है तो जो दो तीन प्लेयर हेली मैथ्यूज, डॉटिन, इनको स्टेफनी टेलर, इनको स्कोर करना चाहिए था. तो स्कोर होता तो जो मैच जो था वो कुछ फाइट के लिए जाता, तो स्कोर नहीं था इतना. फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला, मैंने जो बात करी थी कि वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर बैटिंग कर रहे थे वो क्रॉस खेल रहे थे ज़्यादा, मतलब बॉल के पिच में भी नहीं आ रहे थे. वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखिए, चाहे गार्डनर को देखें, चाहे बेंट मॉनी को देखें, तो वो ना बॉल के ऊपर चढ़ के बॉल, मतलब अगर वो स्टेप आउट भी करते तो बॉल क्रॉस नहीं खेला उन्होंने कोई भी शॉट. कवर्स ड्राइव खेले उन्होंने, तो स्ट्रेट खेला, मतलब वी शेप में उन्होंने शॉट्स खेले.
0: राइट. एंड बेथ मूनी, सिंस यू जस्ट स्पोक अबाउट हर, पुट अप एन एक्सेप्शनल नॉक टुडे. 36 बॉल, 61 रन्स, व्हिच इंक्लूडेड 8 fours at a strike rate of almost 170, 169.44 to be precise. Rakesh, I'll come to you. Well, West Indies were able to get one quick wicket early on, 29 for the loss of the first wicket, but 125 we all knew were never going to be enough for West Indies to turn the tide in their favour.
3: Absolutely, because there was no pressure from the scoreboard. And when you don't have that thing first up, I mean, anything like 150, 160 would have been, because if you're looking to give your spinners a chance, you should have runs on the board. And here, of course, they just raced away with it. Like, they were averaging almost 10 runs an over. Like, 13 would mean that they were almost 10 runs an over. So, that's the kind of team that you have to, you know, I mean, the kind of performance that you have to give. If you are up against a weaker opposition, it's not just that you go and win. You score an emphatic win. You have to tell that other team, there's a difference between us. Gee. And the difference was reflected in that with 8 wickets and 7 overs to spare.
1: आप तीनों से ही एक सवाल, रविंदर जी, आज प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा?
4: मुनी,
0: बेथ मुनी,
4: मुझे लग रहा है कि वही बैटिंग है. बॉलिंग में तो ज्यादा दो, उसमें उन्होंने 61 रन बनाए 36 जो उसमें बॉलों में, मुझे लगता है मुनी कोई चांसेस लग रहा है.
1: और कोई दावेदार है?
3: अब इन्होंने मुनी कह दिया है, विच इज ऑब्वियस मुझे लग रहा है, बट मैं कहता हूँ एश गार्डनर हो सकती है, क्योंकि 2 विकेट लिया है और नॉट आउट रही है, और लास्ट में जो भी उन्होंने 35 रन बनाए हैं.
1: अब आशा तय करेंगी.
2: मुझे संकट में डाल दिया है.
1: आप कोई तीसरा दावेदार भी लाइए.
2: नहीं, तीसरा दावेदार वैसे है नहीं, उन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगा. तो मुझे जहां तक लगता है जिसने 50, बेथ मोनी ने 50 करा है, तो
1: और विकेट कीपिंग भी तो की है. कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि 20 ओवर उसने कीपिंग भी तो की है.
2: हाँ, करी तो है, सही बात बोली है आपने. तो इसी डाउट में मैं बेथ मोनी को बोलती हूँ.
0: राइट, ओके. क्योंकि द गेम टुडे इज ओवर ऑब्वियसली, बट अब ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में जा रही है. क्या आपको ऐसा लग रहा है आशा कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस वक्त अपने खेलने के अंदाज से एक इनविंसिबल टीम लग रही है, जिसको शायद कोई भी ना हरा पाए अब?
2: नहीं, मैं हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फाइनल में पहुंची है, बट आप इंग्लैंड को भी कम,
0: या फिर साउथ अफ्रीका.
2: हाँ, अभी तो चलिए, हाँ वो तो गेम अभी बचा है, वो तो डिसाइड करेगा 2 तारीख को ही करेगा. पर ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से आज का भी मैच उन्होंने जो खेला है, तो उनकी जो सारे, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटिंग है, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा है, सबने दिया है. बॉलिंग में भी देखिए आप या फील्डिंग में भी देखिए, हाँ एक दो कैचेस उनसे भी छूटी हैं, बट ये है कि उनकी जो साइड है वो एक, अगर आप वेल, मैं एक बिल्कुल, मतलब पैक्ड है कि बैटिंग भी है उनके पास, ऑलराउंडर भी है उनके पास बॉलर भी अच्छे हैं. तो जैसे बेथ मोनी, और इवन सब फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे अगर आप बेथ मोनी की बात करें या एश गार्डनर की बात करें या पैरी की बात करें तो सारे अच्छा कर रहे हैं. किम ग्राथ है जो बॉलर हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है.
0: राकेश, योर टेक ऑन इट दैट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलियंस लुक इनविंसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम?
3: Yes, but they are yet to play the home team. And where you have conditions which are a little alien to you, but of course, this is a very, very seasoned team.
0: Yes, but for now, I'll have to just pause you because we'll take you straight to the post-match.
5: Be our toughest opponent. But yeah, the quick turnaround, we knew that it was always going to be a really nice wicket, and we were in London, thankfully. So yeah, just a short travel, but yeah, really pleasing to get the win.
6: Great spell of bowling from you today, picking up the wickets of Claxton and Taylor to restrict the middle overs.
5: Yeah, I feel like I haven't really had an impact with the ball throughout the tournament, so I guess to save my best till now is always pleasing. I felt like, yeah, I've just probably been pretty inconsistent, where today it was kind of working, just making sure that I was hitting the stumps as often as possible, and then ultimately being able to get a couple of scalps is always nice as well.
6: Six wickets to the spinners today in a great tournament so far as well. What are the conversations pre-game amongst the spin attack?
5: Well, we knew that this wicket was probably going to be a good one, but it actually was quite inconsistent at times with the bounce, so making sure that we kept the stumps in play for as long as possible. It's one of our measures, and I guess dots and ones as well is really important too, I guess, against a team like this that we know want to hit boundaries, so making sure that, you know, dots and ones are a win as well, so making sure that they're our key markers that we're hitting, and I felt like we did that today.
6: Bit of a slow start for you with the bat in this World Cup, but a couple of really good scores recently and a partnerships from you. What's been the turnaround in that form?
5: I would love to have an answer for that, but I really don't know. I just feel like confidence is a big one for me with bat in hand, and I guess it's giving myself a chance. I feel like when I've thrown, I guess, my innings away, I've probably thrown it away too early and not actually got myself in and then got used to the conditions. So for me, it's just being able to, you know, use the first six balls as best as I can, hitting the sweepers hard and then also running hard with my partner, and then hopefully boundaries come after that.
6: Well, thanks for your time and good luck in the final.
5: Thank you.
0: And there we had it, the discussion that we were just having, which is who should be or who would be given the player of the match. And this time this was well-earned Ashleigh Gardner out there. The crucial knock of 16 balls, 35 runs, or should I say 20 balls, my apologies, 35 runs, which included 4 fours and 1 six at a strike rate of 175, and also 2 crucial wickets that she took. I'll have to come to Rakesh because you were the man, the prediction king, who got that prediction right over there. Perfect,
3: thanks so much.
0: Well-rounded performance out there, yes, by Ashleigh Gardner today.
3: Yeah, absolutely. Because, see, it was a low-scoring game, and those 2 wickets ensured that West Indies suffered.
7: Shrota Bandhura, etokkhon shunlen Englander ovale onushthito ICC Mohila T20 Cricket Bishwokapir prothom semi-final er khelar dhara biboroni. আকাশবাণী বিলোনিয়া, এই অনুষ্ঠান আপনারা শুনতে পাচ্ছেন 103.7 মেগাহার্টজে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন প্রচার তরঙ্গে. আমাদের স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় রাত 10:05 হয়ে 50 সেকেন্ড. অনুষ্ঠানে এবার শুনব কিছু পুরনো দিনের বাংলা গান, অনুষ্ঠান হারানো দিনের গান. আজকের হারানো দিনের গানের এই অনুষ্ঠানে আমরা শুনব কিছু কালজয়ী বাংলা গান, শিল্পী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে.